तो है खुशकिस्मती मेरी, ये डर है वक्त कुर्बानी मोहब्बत आएगी मेरी। आप आंखें बांध लीजिए, आरज़ू है बस यही मेरी। इसी तरह मेरे हाथों को पैरों को जकड़ दीजिए, कहीं

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: about Odin. Subha al sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

हमारे सभी सुनने वालों को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुनने को जा रहे हैं। आज शुक्रवार 14 तारीख अगस्त का प्रोग्राम फ्राइडे फिर 3 अगस्त। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रहे थे आरजे दंकेबल। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी बहो, आप रे को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रे की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 15 मिनट व्यतीत हो चुके 9:15। खुद मोर खालमा मैं हूँ सुबह शिव गोविंद, और जहां तक आप लोग मेरी आवाज को सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को आज का सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूँ। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन। यहां से लेकर ठीक दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं नई तत्व। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो वो हो सकता है व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 020-363-0008 पर, या वेल 020-363-0008 पर। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे, दिन में 3 बजे तक, मानदख तो मैं 7:00-7:03 और यहाँ का फोन का नंबर है 020-9909807 पर, आप लोग तार कर सके हर एक काम काज के लिए। उजाला का वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी।

ओम जय अम्बे गौरी। और इस तरह से ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खास करके अनूप जलोता जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग सुनाने वाले हैं, और गाना जो आप लोग सुन रहे हैं

वेल यार मूड के ना देखो दिल भरू और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। हमारे प्यारे सुने वालों आप हर को शुभ दिन और चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी सुनने वालों को हम खिदमत करने वाला हूँ। शुभ दिन फैन वीकेंड टू खबेंस हमारे तरफ से जो भी वीकेंड तो हमें करिए प्यार से करिए। मैं जो अनुद कोक एंड कोक सलमान।

कल आज मैं वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ा था, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एन बैन वीकेंड या वेल बैन वीकेंड एंड व्हाट खाऊं इन द वीकेंड कुकिंग व्हाट खाऊं फंदा खेतन। आज का बनाओ खोई का, पकाओ खोई का, खाओ खोई। एंड आज बहुत गर्म रही

मेरी तकदीर में अपना नाम लिख गई है। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वाले युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए प्रोग्राम को भी बहुत ही प्यार के साथ। संद्रा प्रोग्राम बैठ के सुने प्यार के साथ गाना पेश है

बाल ये कैसा इश्क है, दिल दिल मेरी न माने, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो दरहा शहर में, जिसका जय भाई आनंद जग्गू भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, करोड़ का दिल चुराने वाला हार्ट मिले मायती मुकेश ओ मेरी हमराही। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए सुनीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं और प्यार के साथ गाना पेश है।

0: कल जब से तू मिली अन चैन दिल को ना आए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनी और देखा जाए अमसरम सही, तो उसमें हमारे मामी जी खैरदा भी प्रोग्राम को बैठ के सुने, खुद मूर्ख मामी जी, और गाना जो आप सुनेंगे तो इस गाना आपके नाम कर देता हूँ। और गाना जो सुनिए यार, गाना इस तरह से, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम खुद मूर्ख अलमाओ फुर्सिख्तक में दे हित यार यबाओ।
1: तू तो चली गई लेकिन मेरा दिल आज भी वहीं खड़ा है जहां तूने आखिरी बार मुस्कुराकर अलविदा कहा था।

और जो गाना हम आपके लिए घुमाना चाहते थे और गाना इस तरह से होना चाहिए। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और खास करके हमारे मामी खैरदा के लिए गाना पेश है।

कर ले प्यार तू कर ले, दिल को सभी से प्यार कर ले, दिल है प्यार करने के हम। और इस तरह से आशा जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुन बोलो, आज शुक्रवार का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम, एंड नतुल आकाश बहुत गर्म रही और सिख्त में दहित जो भी आप लोग करिए प्यार से करिए। नतुल ड्रिंक टू वेल फील, पानी ढेर पिए यार, बाहर जे भी पानी ले लिए, अगर हो सके तो कोई छाता ले लिए, पनघमिया से बहुत बच के रहिए।

कुछ कुछ इंतजार खत्म नहीं होते और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। और देखा जाए दरहा शहर में मरीजा भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं और गाना को मांग के है। गाना जो आप लोग सुनेंगे तो अभिजीत की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस तरह से वल दीवाना लेके आया हूँ, मैं भी दीवाना लेके आया हूँ आप लोगों के लिए।

0: में दीवाना लेके आया है दिल का नजराना। और इस गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अभी जीत के आवाज में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुने। उजाला रेडियो का दफ्तर खोले गए हमारे प्यारे सुनो लोग, आप लोग तार कर सके। अवतार का नंबर है 9204909907 पर आप लोग तार कर सके। वरम यार गर्मी का मौसम है
1: कि आपके हर इशारों से मैं समझ जाता हूँ कि आपको क्या चाहिए।
0: यवल छुकर मेरे मन करो।

0: इशारा।
1: लल्लू चुकर मेरे मन को तूने क्या किया इशारा। इशारा से अभिजीत के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो किशोर कुमार एंड लता जी के आवाज में गाना जो आप सुनिए। और इस गाना पेश करेंगे देखा जाए राजेश भंडार से भी काम करे है अमसराम नॉर्थ में वर्क्स एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम बैठ करके सुने हैं। गर्मियों में भाई वह काम करे है वर्क्स यार

बलियर गाता रहे मेरा दिल, आयुषरा से किशोर कुमार एंड लता जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जाए हो दौर में आनंद मंगरू भी प्रोग्राम को बैठकर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम।

वेल यार ओ मेरे दिल की चैन, और इस तरह से अभी जीत के बाद उसमें गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और आज शुक्रवार 14 तारीख अगस्त और मेरे शहर में जहां पर आज श्रीमान प्रकाश चंद्र का सिंह का जन्मदिन है, भाई जी बधाइयां शुभकामना आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर।

जिंदगी, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, करीबन 20 मिनट बाकी रहा 11 बजने में, 20 मिनट फॉर आई लव एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो इस गाना को मांग करने वाली इफोनो की तरफ से प्रकाश के लिए प्यार एंड मोहब्बत के साथ।

सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, इस गाना को मांग के थे इफ फोनो की तरफ से प्रकाश के लिए। प्यार और मोहब्बत के साथ आप दोनों को एक शुभ दिन। एंड यू आर उजाला रेडियो आई बॉय।

पुकारे मेरा प्यार आजा, इस तरह से सोनू निगम जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनी, और हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 3 मिनट बाकी रहा 11 बजने में, और नतुलक हतवर फंदा हेता हेता रहेगा, खूब मोई गरम रही, और आप लोग जो ची करिए वेल प्यार से करिए, एंड ड्रिंक टू फील वाटर नतुलक, हाँ पानी ढेर पिए यार, या वेल, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, दिन में 12 बजे तक आप लोग को साथ हम देने वाले हैं, कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी को हम खिदमत करने वाला हूं। एंड वीकेंड वाई है तो आप अपना वीकेंड मोई से बिताइए, जो भी करिए यार प्यार से करिए, दुलार से करिए, नहीं तो ना करिए, ये वादा रहा।

प्यार प्यार तूने ये क्या किया, और हमारे प्यारे सुनने वालों नाड़े पर एक नाड़े रिक्लाम बने के तरह यार, और आप लोग बस सुनते ही जाइए। दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं या वेल हतिस बैना वीकेंड। आप सभी को शुभ वीकेंड, फैन वीकेंड तू खबैंस हमारी तरफ से। अति योग दूर प्यार से।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

जला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। करीबन 11 मिनट बजे हो चुके हैं, 11:11 ऊपर अलव ही खुद मोर खालमाओ और चलिए प्रोग्राम को भी देखा जाए एकदम मास्टर्स मास्टर्स कहती अनीता प्रोग्राम को बैठ करके सुने ना बैठ कर सुने अपन ओतो में बा सिस अंदर वे एंड बोले बोले लॉयट एंड दाउदलक बोले उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुने हैं एंड देश स्पेशल फॉर यू अनीता।

वेल वेल यार, फूल भेजा है तुम्हें खत में, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और देखा जाए ब्रेडा शहर में भी आशरीना भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मुर्ख। तो चलिए आशरीना ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं।

लाल पत्थर की सनम मैंने तुझे खुदा जाना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और देखा जाए मानो भी प्रोग्राम को बढ़कर सुने, मानो गाना मांग के अपने सुनुष्य के लिए प्यार और

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, बहारो फूल बरसाओ कि मेरा महबूब आया है, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुने वालों। और थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं, या वेल थोड़ा देर और, एंड यू आर उजाला रेडियो है। आई बॉय चलन दे।

वेल तू छुट्टी छुट्टी लेके आ जा बालमा एन इस तरह से सुधीर शिवदत्त एंड नीलम माता दीन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए बॉय का भी प्रोग्राम को सुने बेनिंग में एंड बॉय का खुद मोर

अरे यार ये पर्दा हटा दो, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और देखा जाए अमस्टरडम शहर में तोनी इसी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने, और दनहाक में स्कैफ रंग में भाई लक्ष्मण भी प्रोग्राम को सुने खुद मूर्ख। एंड यू आर उजाला रेडियो है, थोड़ा देर तो कौर आप लोग के साथ। कल आज एक को सपना मिलल की का बनाओ कोई का खाओ कोई मंथ एट इस फेल्स फेल्स वारंग बहुत गर्म बा, और कोई ना पकाए आज सबके कोई के घरे हड़िया उल्टल बा। जबल खून ब्रोदा ये तो खून बातर दा।

वेलियर ओ हजीना जुल्फो वाली, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो है। और करीबन 20 मिनट बाकी रहा 12 बजे में अमसलम सोए, तो उसमें हमारे मामा खैर पारस मुली भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, खुद मूर्ख और देखा जाए। और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो रिया कल्लू भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, खुद मूर्ख।

जीना तो इसी का नाम है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे एंड आपकी बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए भाई शहीद गुलजार भी प्रोग्राम को बारीक सुने हैं। और चलिए ये गाना तुम्हारे नाम का देता हूँ और सुनिए इस तरह से ओ वेल या वेल बॉय।

0: ओ हसीना बोले मैंने कभी मोहब्बत ना करनी थी, दिलवा तो हरदम हरदम दिलवा के बात है, दिलवा के कसूरबा जो चिक होई दिलवा दिलवा दिलवा के कसूरबा। वेल का करक होई, दिल तो अपना है, दिल तो अपना है आवारा।
1: है अपना
0: और देखे जाए सुतमेर में शांता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद अमर खैर।

ऐ अपना दिल तो ये आवारा और न जाने किस पर आएगा। आयुषरा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे और हम आप लोग से बता चुके कि आज पकावे के कोई रेसिप अंदर ना आए। हम तो लोग से बता चुके कि वेरवा इतना गर्म बाद आज हमारे जान कोई ना पकाए कोई ना पकाए और जो कोई कुछ ना पलाए। अरे यार कोई बात ना है, बरौदा करिए, चाहे भूजल भात बना लिए, चाहे जो चीतू बनाइए वेरवा में मोई से बनाइए, मोई से पकाइए, मोई से खाइए और अपना वीकेंड तो लोग मोई से बीताइए। जो भी करिए प्यार से करिए, नहीं तो ना करिए।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, हम आप लोग से अब धीरे धीरे इजाजत लेंगे। आज का प्रोग्राम यही आशा, जिस तरह से प्रोग्राम को हमने बनाए सजाए, आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले दिनों फिर हम आप लोग से मिलेंगे। अपना शुक्रवार का दिन तो आप लोग मौज से बिताइए, मौज से रहिए, मौज से खाइए, मौज से पिए। और इस गर्म मौसम में बच के रहिए, जो भी करना है सोच समझ के कर लेना।

और हमारे प्यारे सुने लो, आप लोग मौज रहिए और आप लोग अपना दिन मौज से बिताइए और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते, आइन खुदा हाफिज़। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिव गोविंद। मौज रहिए, बाय बाय, स्वाय स्वाय।

हम खमोन जाइला खबराय करे कॉफी एंड चाय के कोर्टिंग स्कूड तू खबराय करिए ओकर हाइगा कोर्टिंग स्कूड हाइगा जोन ओ हाइगा होंदर्थ एन नल नल कोर्टिंग स्कूड जोन हाइगा एन नल नल अगर तू कोर्टिंग स्कूड खबराय करिए dan krijg je nog een kleine korting erbij. Na bohut barka wali, na bohut mota wali. Ego mooi pater wali. Maar moeilijk het hoor, elke korting is leuk. Dus toen je hier bij brassafest.nl, toen maakte Hamar Sange Chang. Open je mobiel. Toen op een mobiel wat kool, ja to op een laptop kool, ja to op een pc starter. Ham toch eens aan mij deed dat. Ga even naar brassafest.nl. Toen waarop je dekje programma, Lamba Chaura. और तू देखिए टिकट और तू जाइए वहां पे जहां टिकट तू किन सकेगा दा क्यों ये हेल मकलक ऑनलाइन रेगलन तू कौन अपन टिकट किन सकेगा वहां पे और अगर एगो देखिए कोर्टिंग्स को दे एक जगह लिखल बा हमने नहीं वर्ड वाला लिखल बा कोर्टिंग्स को दे की कोनो दूसर वर्ड लिखल बा हो सके एगो दूसर वर्ड लिखल बा मा ओही मतलब आएगा कोर्टिंग्स को दे तो तू इनफिल करिए 800 और तू प्रोफिटेर करिए देखो मोई क्लाइन कोर्टिंग मोई लगेगा एंड फॉर द मेंस दी डैंक फन सुनना हमार खाती इन खवेकल थाईगा हमार खाती बहुत इन खवेकल थाईगा कोर्टिंग्स को उदो उदे से काम करे के ऑनलाइन कीने के हम ना मांगीला उसी जुबा हो सके तो ई हाईगा थ्रोमन्स डायमंड्स के अपनामे एगो उतना मोई अपनामे ना हाईगा हम फेली करेला

naam Vinnie op naam Wana Mooi Hit Chat, dus ik sla hem over. Laten we eventjes zien en gaan luisteren, ja toch? Hai, dit is wel een goede opname. Sanjana, Express ke saath, ye rahega yaar. Apan naach ke saath bhi, gana ke saath, wahan par naach ke saath bhi. To aiye dekhiye. Jo hum bolat rahi, agar tu fe nahi karega, ki bahut mushkil hai ga aapke khati, online ki neke, ki computer computer ke cheez to like na hai ga. Ho sake to? Aur tu rahega Den Haag shahar mein, ma tu mange aave. Aur tu kahega tu falak oye fast pass. तू जाने तो कोर्टिंग्स पास कमेंट वाली ओएस फास पास ओए फास पास हमें बोले चाहिएगा हम सदम में हैगा बाय फोर स्टार्ट्स पास ऐसे हैगा Den Haag शहर में ओए फास पास जब Den Haag में रहेगा और जिनके पास हैगा ओए फास पास वेल हम तो के खुशी करेंगे यार तो तू आ सकेगा वही दिन जोन दिन तो के आवे के बस नीचर के या तो अतवार के या तो दोनों दिन नतुलिक 29 एंड 30 अगस्तस तू आइए गवोन वहां पे जिया में और तू वहां पे तेर प्लेक कार्टा किन सकेगा मत 50% कोर्टिंग देख ले तो एक वा 50% जो ढाईगा Den Haag गमेंट और उजाला मिलके भरेगा वो दोनों मिलके एक एक डील डेक करेगा आधा दोस और अधवा जंतु के भरे के बाद सो तो कितना मकलक तू अपन ओए फास लेके आइए एंड यू कोप दैट गवोन ऑन द

Laatste weekend van augustus, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. दो बजे सांझ के प्रोग्राम शुरू होगा। शनिवार के दिन और इतवार के दिन भी दो बजे सांझ का प्रोग्राम शुरू होगा। सात दागा वो दोर फन 12 uur, नहीं, फन 2 uur in de middag tot 1 uur in de ochtend. En zondag gaan we door tot 12 uur.

जाज़ ऑफ़ एस पे रहेगा रोशाना भी। तो वही है खाना ब्रासा फेस पे इंटरनल एंड स्कोर ये कार्ट इस साइड बहुत सस्ता हैगा दोस्तों, सस्ता में किन ले 20 तारीख तक रहेगा सस्ता में एकदम दोस्तों, खबोन अपन स्लाख मार दे ओके एंड है मात्र तू लग दी तो अंदर ही कतो

ये गीत जो है ना, आप किसी के याद में भी सोच सकते हैं, चला सकते हैं, गा सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उनके लिए भी ये गीत है। कभी जम ना रहबे, देख ले तो नारो उफर खातर में बर मोयर संजय। ऐसा ऐसा कलाकार हम लोग के बीच में आएगा सुनने वालों, और ऐसा ऐसा कलाकार भी वहां आई के ब्रासा फेस्ट पे आपके खाती गाएगा, आपके मनोरंजन के खाते। और ये कलाकार जो है ना, अपने लिए नहीं गाते, कभी नहीं, आपके लिए गाते हैं।

Beautiful. En dan gaan we naar deze toe, hoor. Totaal anders natuurlijk. Andere stijl. Maar het hoort allemaal bij ons. Waar, waar? Aple. Aple, sujal ke tamasa, sujal umrao. Surya ke saath, ye bhi rahege, yaar. Live on stage. En een heleboel danseressen. Rahiga saath saath mee, yaar. Na sujal ke saath khali. Met al die artiesten, met een heleboel artiesten. Maar sujal ke sange natuurlijk. Een heleboel danseressen erbij. Na ego, na duigo, na tingo. Een heleboel. Doe je. Het wordt tamasa, het wordt geweldig. Het wordt vuurwerk. Het wordt heel chill. Doe je. Brasa fest. Yes. Sujal ke saath. Tu kahe na aye. Hame bol tu kahe na aye. Die batia tu hame uitleg kar. Waarom zou je niet komen? Apen Hindustani ke evenement mein. Ekdam bitter. To ke dar na hai ga ki barish hoi ga. Auto kaha parkeer kar be. Veiligheid na mohi ga. Na yaar. Ujala ke hai ga. Tu jane ga. Hum log dil lagi na karila wahan pe. कोई आएगा वहां पे रोटसोई करे, कोई आएगा वहां पे कुछ करे, कोई बनमासी भी, वेल, तू जाने हम लोग के बात ही तो, तू जानेगा कि कैसे हम लोग इनक्राइब करे बे, दोस्त वहां पे एक को प्रॉब्लम ना हो सकेगा, और अगर कोई मांगी प्रॉब्लम करे भी, तू जानेगा कैसे हम लोग इनक्राइब करे बे, एक को दिल लगी ना, दोस्त तोर फैलखाई एकदम सेती, तोर गाड़ी ऑटो जोन हैगा एकदम मोई से पार्केर करिए नेचर से तो के नहुफ खोजे के गली गली ना खवोन इन द ब्यूट फॉर जिया इवेंट सेंटर भरल है जगह ओपन बार फॉर फूर से तू भी आ सके मैं अपन ऑटो से आ सकेगा देश भर में से दुजनी ताले द मेंस ऑफ दनहा नहीं तू देख ले गूगल अटे इवेंट जस्ट द वेरफ नंबर 11 देख ले तो द वेरफ नंबर 11 जिया इवेंट सेंटर अम्मी जोन सोचे तो कहाँ पे हैगा कैसे हैगा बहुत मोई हाल बहुत मोई लोकांसी अगर हम बोली ला बहुत सुंदर तो तू विश्वास कर ले हमसे अलर मोई तो सबसे मोई जगह एकदम सुपर डिलक्स वहां पे तो वही है हलचल कलक होई साथ है साथ सुजल के साथ

on stage. Rasa Vesper. 29 en 30 augustus. Laatste weekend van augustus. Toke avik pariyar. Kaise tunaiye? Aur kahe tunaiye? Aapan Hindustani ke evenement mein. Tunaiye? Ta keker face pe jaiye. अगर तू हिंदुस्तानी के इवेंट में ना आइए तो कौन इवेंट में तू मांगे जाए कोरखाती स्पेशल गन्हा शहर में हिला देखो ये हम लोग सबसे बरका सबसे मोई सबसे खसालक इवेंट उजाला के साथ उजाला वहां पे भी बनाएगा लाइव आउटस्टैंडिंग लाइव कार्यक्रम हम लोग बनावे फनाफन ब्रासा फेस्ट गन्हा के बैठाऊ दस जोन हैगा भी रहेगा बैल वहां पे हम लोग के आसपास और बरका बरका आदमी रहेगा नौया बरका बरका आदमी तू समझेगा हमका बोली ला तो जिनके दर्जा हैगा लाओ ऐसे बोली उस सब रहेगा वहां पे बड़ा सा फेस्ट पे और तू भी रही है यार तो हूँ थोड़ो कमती बात है तो क्या आवेक पड़ी और हम तो कह गो ब्रासा दे तू आइये हमें खोज लिए वहां पे हम रहबे हम कहो ना जाबे हम वे पे रहबे यार मिस्टर ब्लैक या तो मोई गाना यार रहेगा भाई चली सुने ई कौन ची हैगा ई के हैगा हम बताई सकेला तो के निजाम वाकिद हुसैन द लेजेंड्स के साथ

0: लाइव ऑन स्टेज बड़ा सा फेस्ट पर यार तू ये समय कम है दोस्त हम जाए ना जल्दी जल्दी नंद फॉल खंदर आई बोई एक अपना हम सही फॉर्म नीचे मुका मुकेश लाइव ऑन स्टेज विद एक्सप्रेस
1: ए हो रही गया यार नतुर्लक

आतिफ असलम की आवाज और स्टेशन उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हम लोगों के वेबसाइट आप देखें ujala.nl। नेम ऑन्स ओवरऑल में और डाउनलोड कर ले उजाला के ऐप जो है।

तुझ में रब दिखता है, रूप कुमार राठौड़ की आवाज। रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से गीत को आप सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों। और आपके साथ हम भी सुन रहे हैं

Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. पूरा परिवार के लिए, पूरा परिवार के साथ आइए और मनोरंजन प्राप्त किए फॉर अ गजेलिग डग, गजेलिग मिडग, गजेलिग अवंड, गजेलिग फेस्ट मेट द हेले फमिली और वी सुजल उमराव के साथ मेट्स

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से लड़कन निधान सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल की आयु में द्रियन निहंत यार औत लड़कन जॉनी शॉर्शीन हेलोविस रॉबी और आयरीन निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतोह के ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना। दिमनजोइत का रहने वाला श्रीमान अंद्रे निधान सिंह की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। लड़कन निधान सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल की आयु में लड़कन जॉनी शॉर्शीन हेलोविस रॉबी और आयरीन निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतोह के ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना। दिमनजोइत का रहने वाला श्रीमान अंद्रे निधान सिंह की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे इतवार के दिन में 2 से 3 तक जोंदा खानस्टांड फन 2 to 3 उइटवर्ड सेंट्रम वेस्ट गार्डे के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 1 वोंसदा खानस्टांड 1 किए जाएंगे। क्रीमेटोरियम वेस्ट गार्डे ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्त फुरजोरखी परिवार निधान सिंह के दुख में शामिल है।

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Eind van de maand, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Den Haag, Sheher Meyar, Brazzafest. अबे तू कार्ता किन से कहेगा? बहुत ही अच्छा प्राइस में, लाख प्राइस में। ओके बोला जाएगा एर्ली बर्ड सुनने वालों। अगर मतलब बाकी प्राइस जो नहीं गा अबे, बहुत मौज हैगा। तू सस्ता में किन से कहेगा? एक आठ चौरो। हमारे जान अब से लेकर छाऊरो चाऊरो आ जाएगा। फिर तीन दर दूसरे कर मतलब ट्वेंटी खोकुश तस्तल रोज आपके पास आएगा समय एकदम सस्ता में कार्ता किने के ब्रासा फेस्ट के खाना ब्रासा फेस्ट पे उनका नाम रेखा।

हम खमोन जाइला खबराय करे कॉफी एंड चाय के कोर्टिंग स्कूल तू खबराय करिए ओकर हाइगा कोर्टिंग स्कूल द हाइगा जोन ओ हाइगा होंदर एन नल नल कोर्टिंग स्कूल द जोन हाइगा एन नल नल अगर तू कोर्टिंग स्कूल द खबराय करिए दं क्राइज नो होन क्लाइन कोर्टिंग दरबाय ना बहुत बरका वाली ना बहुत मोटा वाली एगो मोई पातर वाली मम मोई लगे तो एल्क कोर्टिंग इज लुल दोस्तों जाइए अबे ब्रासा फेस्ट.nl तू मांग तो हमार संगे चल ओपन या मोबाइल तो अपन मोबाइल वा खोल या तो अपन लैपटॉप खोल या तो अपन पीसी स्टार्ट कर हम तो के समय देगा खाई फना ब्रासा फेस्ट.nl तो वहां पे देखिए प्रोग्राम लंबा चौड़ा और तू देखिए टिकट और तू जाइए वहां पे जहां टिकट तू किन सकेगा दा कुन इट हील मक्लिक ऑनलाइन रेगलन तू गोन अपन टिकट किन सकेगा वहां पे और अगर एगो देखिए कोर्टिंग्स को दे एक जगह लिखल बा हमने नहीं वर्ड वा लिखल बा कोर्टिंग्स को दे की कोनो दूसर वर्ड लिखल बा हो सके एगो दूसर वर्ड लिखल बा मा ओही मतलब आएगा कोर्टिंग्स को दे तो तू इनफिल करिए 800 और तू प्रोफिटेर करिए एगो मोई एक लाइन कोर्टिंग मोई लगेगा En voor de mensen die denken van Sunna, Hamar gaat hij ingewikkeld hij Hamar gaat hij behoed ingewikkeld hij ga. Kortingscode hoe deze kam kareke online kineke. Ham na mangila uchijwa. Hoe is het hij ga trouwens een diamonds ke opname ego. Wat een mooie opname na hij ga ham fedikarila.

Brothers of S पे रहेगा रोशाना भी। तो वही है खाना ब्रासा फेस पे इंटरनल एंड स्कोर ये कार्ट इस साइड बहुत सस्ता हैगा दोस्तों। सस्ता में किन ले 20 तारीख तक रहेगा सस्ता में एकदम दोस्तों। खबोन अपन स्लाख मार दे ओके एंड है बात ना तू लग दी तो अंदर ही कतो।

ये गीत जो है ना आप किसी के याद में भी सोच सकते हैं, चला सकते हैं, गा सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उनके लिए भी ये गीत है। कभी जम ना रहबे देख ले तो नारो उफर खातर में पर मोयर संजय। ऐसा ऐसा कलाकार हम लोग के बीच में आएगा सुनने वालों, और ऐसा ऐसा कलाकार भी वहां आई के ब्रासा फेस्ट पे आपके खाती गाएगा, आपके मनोरंजन के खाते। और ये कलाकार जो है ना अपने लिए नहीं गाते, कभी नहीं, आपके लिए गाते हैं।

0: क्या गीत है यार तो ओरिजिनल इज गवेल्डर बट दिस इज ओक आउटस्टैंडिंग संजय जोता लाइव ऑन स्टेज विद एक्सक्लूसिव टाइडेंस ब्रासा फेस्ट तू आइए
1: बन के कली
0: तू आइए बन के कली

समैया समैया थोड़ा कमती बातो तो समी गनवा तो जहाँ पे ऊपर स्नान करे छा सुजल तो के हम लोग देखे बे लाइव ऑन स्टेज ना तो लग ब्रासा फेस्ट पॉइंट एनएल तो जाए के सिटी कल्ले अपन करता इस आयत करता जोन होएगा बहुत सस्ता दाम में मिलेगा दोस्तों जाए के कौन किन ले यार रिकल कल्ले चिजवा है वदाखी फन हेमदान ये दे म्यूजिकांत खेलेगा दमिया भी Ai. Hij mag niet ontbreken natuurlijk. Een van de gezelligste zangers.

Mr. Black. Live on stage. Rasta Vesper. 29 en 30 augustus. Laatste weekend van augustus. Toke avik pariyar. Kaise tu na ye? Aur kahe tu na ye? Apan Hindustani ke evenement mein. Tu na ye? Ta kekar face pe jaiye. Agar tu Hindustani ke evenement mein na ye? Ta kon evenement mein tu mange jai? Korkati special. Den Haag shehar mein. Hila dekho ye hum log. सबसे बरका, सबसे बरका, सबसे मोई, सबसे खसालग इवेंट, उजाला के साथ, उजाला वहाँ पे भी बनाएगा लाइव आउटसेंडिंग, लाइव कार्यक्रम हम लोग बनाबे, पनाफन ब्रासा फेस्ट, जनहाँ के वेत हाउ दस जोन हैगा भी रहेगा बेल वहाँ पे हम लोग के आसपास और बरका बरका आदमी रहेगा, नौ या बरका बरका आदमी, तू समझेगा हम का बोली ला तो उनके दर्जा है लव ऐसे बोली उस सब रहेगा वहां पे बड़ा सा फेस्ट पे और तू भी रही है यार तो हूं थोड़ो कमती बात है तो क्या आवेग पड़ी और हम तो कह गो ब्रासा दे पे तू आइए हमें खोज लिए वहां पे हम रहबे हम कहो ना जाबे हम वे पे रहबे यार मिस्टर ब्लैक या तो मोई गाना यार रहेगा भाई चलिए सुने ई कौन सी है गा के हाईगा हम बताई सकेला तो के निजाम वाकिद हुसैन द लेजेंड्स के साथ

0: लाइव ऑन स्टेज बड़ा सा फेस्ट पर यार तू ये समय कम है दोस्त हम जाए ना जल्दी जल्दी नंद फॉल हंडर आई बॉय एक अपना हम सही फॉर मिनट्स मुका मुकेश लाइव ऑन स्टेज विद एक्सप्रेस
1: हो रही गया यार नतुल्ला।

उमर लाइव ऑन स्टेज भी रहेगा वहां पे सुनने वालों दोस्तों के आवेग परी ये खातन खनीतन वे गान टुरुग इन द टाइड एंड नेचुरली गान वे उमर फ्रागन ऑन दिस नंबर इवेंटस दैर इवेंटस यार हम लोग के सुना देगा टुरुग नद बेलमर टीरा टीरा इज रोक बाय उमर के साथ यार Zij zijn niet in de band van Umar, maar featuring. Wordt leuk, wordt fun. Unachi ga ugai ga Umar kesat met Huyana. Dat wordt een spektakel. Dat wil je niet missen. Nee toch? Je weet wat er gaat gebeuren.

0: चल चल चल रे।
1: नशा मुझे आया, क्यों नशा मुझे आया, मैंने तो नहीं पी, मैं साकी बनी थी।

उजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

दिलवालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। दिलवालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमी को झेलो, मजा ले लो।

चेहरे, इन फूलों को गूंज के प्यारों सर पर बांधो तेरे, दुनिया तुमसे खेल रही है, तुम दुनिया से खेलो, मजा ले लो हाँ, घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा खेलो, ओ खेलो ओ खेलो, ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा खेलो, ओ खेलो ओ खेलो, ओ कल की बातें कल पे छोड़ो, आज मजा ले लो, मजा ले लो।